तेरा जरा तमागोण पंचाय महाभूत दशाई सृष्टि का पहले मोही थी भगत कोई थे नन्नरु जो देखते वाले समय बुझाती नी मेरे विभूति हरु सृष्टि का पति फिर महा परलाय मा मोही ग्रांचु भगत

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: Mania, Extreme Energy Drink.
1: कक्षा 11 को भर्ना सम्बन्धी सूचना
2: माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2082 एस

सुजन बीके अफिसियल यूट्यूब चैनल में सर्वत्र उपलब्ध छ। हेर्न र सुन्न नभुल्नुहोला। लोक सांगीतिक कोशेली मठ मंदिर धाएर कसम खाएर।

0: 14 मा प्लानचोक बेकरी सामुदायिक अस्पताल को अगाडि चरीकोट दोलखा
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
2: मेरो निर्मा राउत हो
3: मेरो त देवकिशोर राकोटी हो
4: आकाशमा मेरो कालो बादलले

प्रत्येक साताको शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपरान्न 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीति कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथा।

0: দানাই লাই রাখনে ভোদান সারাই তিয়া মনাই রাখনে পাইনাঠা আজাতামলে মিঠাই কাজা খাই উচিনি চিউরা কসারা আম খানে কাঁচা ও মনে কো সাঁচা চিনি চিউরা কসারা সোনা কো ডোকা উগারে রায়ের দা গইসা করি অসারা আম খানে কাঁচা ও মনে কো সাঁচা গইসা করি অসারা
1: हाम्रा सेवा तथा सुविधाहरू
2: थाइराइड जाँच, भिटामिन बी टुवेल्भ, भिटामिन डी, एन्टी टिपियो, मुटुको जाँच, मृगौलाको जाँच, कलेजोको जाँच, घुँडामा लगाउने सुई, तीन महिने सुगर जाँच, एचबीएसी। हाम्रा अन्य सेवा तथा सुविधाहरू थाइराइड जाँच, मुटुको इसिजी, भिजियो एक्सरे, सुगर प्रेसर, दम रोग, निमोनिया तथा सास बढ्ने, खोकी लाग्ने, पिसाब पोल्ने, पिसाब छिनछिनमा आउने, महिनावरीमा तल्लो पेट दुख्ने, ग्यास्ट्रिकको उपचार, पाठेघर, स्तन आन्द्रा, प्रोस्टेट र क्यान्सरका साथै बच्चा नहुने लगायत सम्पूर्ण समस्याहरूका लागि प्याथोलोजी ल्याबको सुविधा साथै दन्त रोग र फिजियोथेरापीको समेत व्यवस्था रहेको छ।
1: परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरू र होलबडी जाँचमा 50% छुट गरिनुको साथै पिसाबको कल्चर पनि गरिन्छ।
2: अन्य थप जानकारी र अग्रिम बुकिङका लागि सम्पर्क नम्बर 9861055780 र 9841577069 चौबिसै घण्टा फार्मेसीको समेत सुविधा रहेको छ।
1: इन्द्रणी फार्मेसी एन्ड थाइराइड डायग्नोस्टिक सेन्टर, चरीकोट बीच बजार, भेटेरिनरी अस्पताल अगाडि।

नमस्कार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 MHz बाट म बद्री प्रसाद साहबबाट आज विक्रम सम्बत 2083 साल आषाढ कृष्ण पक्ष सन् 2026 जुलाई 41 आषाढ 17 गते बुधबार परेवा 3:29 पलब मात्र अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरिया हो सक्षण कल्पय भरी।

0: धोका होला है, जीवन को अंतिम छिन में धोका होला है। भाषा का डोला में चढ़ेर सेतो पछौरा ओढ़े जंती जान फुरुरु आगो लाग्छ हुरुरु। यो अमूल्य जीवन गईगो बितेर कृष्ण कृष्ण बनाउला संसार पार तरौला। भन्दा भन्दा यो अमूल्य जीवन गईगो बितेर यो अमूल्य जीवन गईगो बितेर। हस्त धन्यवाद।
1: परिचित अपरिचित मित्रजनहरूमा म शिवको नमस्कार। नेपाल